बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: California.
1: Extreme energy drink.
2: अनि तयो कागज केमे छिवा अ झिल्काई के पर्सनल नम्बर ब्लक लैबदि
3: पर्सनल मोबाइल नम्बर मे उनीयो टेलिकमर बे अफिसर आएर ब्लक लै र खलखाई
2: अनि बैंगरी
3: बैंगरी
2: अ
3: सर चाहिँ तले लगपर्दि
2: समलपति न आफैन मोबाइल नम्बर फेदिया बदेर ब्लक तयै विषय आफैन बैंक दे बिनी जानकारी पिन परिम दे आफैन बैंक खातै न जानकारी अरुइन योरी थनि बेक्या सचेत तल परिम
3: सतर्क तना ठगी तब्दक्या जोगिना
4: सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी सन्देश
5: सिद्धार्थ बैंक सम्बन्ध सधैं भरिलाई

0: सेवा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: समानता र महिला अधिकारको लागि बुलन्दित आवाज रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज

0: बीमा को लाभ दी आप कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो
1: बैंजी खैमत बिली चौधरी एटीएम मोबाइल दे इंटरनेट बैंकिंग के गोप्य विवरण आ रही खई बिले तु माध्यम क्यारे न्यो देप्रे छली जानकारी री विषय न्यो कॉल कर दिमो समय न्यो ठगदिल खामो बैंगर वे कर्मचारी बीरा न्यो देप्रे विवरण री विषय बैंक दे नील पर दिमो न्यो ताने सतर्क तना ठद्र क्या बचेना सिद्धार्थ बैंगर क्याले जनहितरी जारी संदेश
0: सिद्धार्थ बैंक संबंध सदैव भरिलाई
2: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज़।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियो।

0: यो रेडियो दीदी बहिनी को समय सूचक हो।
1: अहिले मध्याह्न को ठीक 12 बज्यो।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले अपराह्नको ठीक 3 बज्यो।

0: बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लेने मौका आज बनो सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अधिकर्ता सानिमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले जियौ
1: रेडियो दीदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: रेडियो रेडियो दीदी बहनी को समय सूचक हो।
1: अहिले साँझको ठीक 6 बज्यो।